0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। इंतहा पसंद ग्रुप पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन का कहना है कि ओकामोतो कोजो का इंतकाल हो गया है, जो 50 साल से जायद अरसा कबल इसराइली हवाई अड्डे पर एक हलाकत खेज फायरिंग में मुलविस था। उसकी उम्र 78 साल थी। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी का कहना है कि ओकामोतो ने जनूब मगरबी जापान की कागोशिमा यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान एहतजाजी तहरीकों में हिस्सा लिया, जिनमें वियतनाम जंग के खिलाफ तहरीकें भी शामिल थीं। ओकामोतो ने अब कलदम जापानी रेड आर्मी के अस्करियत पसंद ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की, जिसे शिगेनोबू फुसाको और दीगर ने कायम किया था। ओकामोतो और दो दीगर ने 30 मई 1972 को इसराइल के तलबीब शहर के करीब एक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। इस हमले में 24 अफराद हलाक और 76 दीगर जख्मी हुए। इसराइली हुक्काम ने ओकामोतो को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे 1985 में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों और इसराइली हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले के एक हिस्से के तौर पर रिहा किया गया था। 1997 में उसे और जापानी रेड आर्मी के दीगर अरकान को लबनान में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उसे वहां पनाह दे दी गई। माजी की जापानी रेड आर्मी के साथ मिलकर लड़ने वाले पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन ने ऐलान किया है कि ओकामोतो जुमेरात को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के मुजाफात में इंतकाल कर गया। जापान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी सॉफ्ट बैंक का कहना है कि वो अपनी फ्लाइंग बेस स्टेशन कम्युनिकेशन सर्विस की अंदरूनी मुल्क आजमाइश अगस्त के वस्त में या इसके कुछ बाद शुरू करेगी। सॉफ्ट बैंक ने जुमेरात को इस मंसूबे का ऐलान किया, जिसे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन या हॉप्स के नाम से जाना जाता है। हॉप्स से मुराद मवासलाती आलात से लैस बगैर पायलट के हवाई जहाज हैं। ये तकरीबन 20,000 मीटर की बुलंदी पर कुर्राए कायमा में तवील मुद्दत तक परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। ये उड़ने वाले बेस स्टेशन ऐसी सूरत में भी 100 किलोमीटर के दायरे में मवासलाती कवरेज फराहम कर सकते हैं, जब ज़मीन पर बुनियादी ढांचा दस्तयाब ना हो। सॉफ्ट बैंक को तवक्को है कि हॉप्स को आफात के दौरान या दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी जल्द से जल्द अगले साल तक इस सर्विस को तिजारती शक्ल देने का हदफ रखती है। जापान के मगरबी प्रिफेक्चर नागासाकी में बच्चों ने तकरीबन 150,000 सूरजमुखियों से बनी द्योहेकल भूल भुलैयों की सैर की है। इस प्रिफेक्चर के उनजेन शहर में एलिमेंट्री स्कूल के तलबा सन 2023 से मकामी बाशिंदों की मदद से हर साल सूरजमुखी की भूल भुलैया बनाते आए हैं। बच्चों ने दाखिली दरवाजे से लेकर खुरूज तक का रास्ता खुद डिजाइन किया। उन्हें उम्मीद है कि भूल भुलैया नया सियाहती मरकज बन जाएंगी। तीसरी जमात के तलबा ने जुमेरात को कागज की पीली पट्टियों से दाखिली दरवाजे को सजाकर इस साल की तख्लीक को हतमी शक्ल दी। उनमें से एक ने सयाहों को सूरजमुखी की तरह मुस्बत रहने की तलकीन की। इसके बाद तलबा भूल भुलैयों में दाखिल हो गए और बाहर निकलने के रास्ते का खोज लगाया। बच्चों की तरह कदावर ये सूरजमुखी की भूल भुलैया 3,300 मुरबा मीटर खेत पर मुहित हैं। कुछ बच्चों ने इस तजर्बे को चैलेंजिंग लेकिन पुरलुत्फ करार दिया। ये भूल भुलैया इस माह के आखिर तक अवाम के लिए खुली रहेंगी।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान की हकूमत ने जुमे को माहरीन का एक नया पैनल तश्कील देने का फैसला किया है, जो गैर मुल्की शहरियों को कबूल करने के मुस्तकबिल के तरीकों का जायजा लेगा। आसियान वज़रा खारजा बुहरा जनूबी चीन में तनाज़ात को रोकने के लिए बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से इस साल के अंदर मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि बुरा अमर में हौसियों ने दोबारा हमला किया तो ईरान जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

0: ठीक है।
1: कुछ देर में काइतो टावर के अंदर आता है और इधर उधर नजरें दौड़ाता है। मियाँ उसे देख लेती है और उसे मुखातिब करती है।
2: काइतो।
0: अरे काइतो।
2: कोची कोची।
0: इधर इधर।
1: काइतो फौरन उनके करीब पहुंचता है और कहता है,
3: गोमें ओसोकुनत्ते।
0: माजरत, मुझे देर हो गई।
1: चले अच्छा हुआ, इन्होंने जल्द एक दूसरे को ढूंढ लिया।
0: घंटा घर सफेद रंग की दो मंजिला चौबी इमारत है। बड़ी घड़ी उसकी सुर्ख छत पर नस्ब है। ये घंटा घर 1878 में तामीर किया गया था।
1: तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
4: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, घंटा घर के अंदर हूँ।
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी मौजूदगी का मकाम बता सकते हैं।
0: टोकेदाई के मायने हैं घंटा घर, और नाका यानी अंदर। चुनांचे टोकेदाई नो नाका का मतलब हुआ घंटा घर के अंदर। नी मकाम के साथ इस्तेमाल होने वाला हर्फ जार है, और इमास फेल इरु यानी मौजूद होना की मस शक्ल है। आज का नुक्ता, अपनी या किसी और की कहीं मौजूदगी बताने के लिए फेल इमास इस्तेमाल किया जाता है।
1: गुज़िश्ता सबक में इसी मायने में फेल अरिमास इस्तेमाल किया गया था, तो इमास इससे किस तरह मुख्तलिफ है?
0: इमास बुनियादी तौर पर इंसानों या दीगर जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेजान अशिया की मौजूदगी जाहिर करने के लिए फेल अरिमास इस्तेमाल होता है।
1: अच्छा, जानदार और बेजान का फर्क, ठीक है, मैं समझ गई।
0: किसी को अपनी मौजूदगी का मकाम बताने के लिए उस जगह के नाम के बाद हर्फ जार नी लगाएं और आखिर में फेल इमस। मजीद वजाहत के लिए किसी मशहूर मकाम का हवाला देना बेहतर होगा, जैसा कि आज के कलीदी जुमले में है, टोकेदाई नो नाका नी इमस, यानी घंटा घर के अंदर हूँ। इस जुमले में अल्फाज की तरतीब यूँ होगी, पहले मशहूर मकाम का नाम, फिर हर्फ जार नो, फिर मशहूर मकाम के हवाले से अपनी जगह, मसलन अंदर, सामने, दाएँ बाएँ वगैरह, और आखिर में नी इमस।
1: कलीदी जुमले में मशहूर मकाम टोकेदाई यानी घंटा घर, और उसके हवाले से अपनी जगह नाका यानी अंदर, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो सामीन अब सुनिए और दोहराइए।
6: टोकेदाई नो नाका नी इमास। टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: जी सामीन, यकीनन आपने उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: और अब फोन पर होने वाला एक मकालमा सुनिए। एक शख्स मुखातिब को अपनी मौजूदगी के मकाम के बारे में बता रहा है।
7: 今どこにいますか？
8: 改札の前にいます。
0: アラブマカルメキテシリ。
7: 今どこにいますか？
1: अभी आप कहाँ हैं?
0: 今के मायने हैं अभी या इस वक्त, और どこにいますか यानी कहाँ हैं। लफ्ज どこ यानी कहाँ आप पहले सीख चुके हैं।
8: 改札の前にいます。
1: टिकट गेट के सामने हूँ।
0: 改札रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं, और माय यानी सामने। चुनांचे काई सात सुनो माए नी का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
1: अब सुनिए और दोहराइए।
6: इमा दोको नी इमास का? काई सात नो माए नी इमास। काई सात नो माए नी इमास।
0: अब कुछ और मकामात के साथ मश्क करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
6: कोम्बिनी, कोम्बिनी,
0: और अंदर को नाका। तो सामीन कोशिश करें।
9: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं तो ये बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है।
6: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन,
0: और बराबर में को कहते हैं
6: योको, योको।
0: जी सामीन कोशिश करें।
10: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर कायतो से कहा था। इसे इसी तरह याद कर लें।
2: वकारीमाश्ता।
0: वकारीमाश्ता के मायने हैं ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
11: वकारीमाश्ता।
1: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی موجودگی کا مقام بتاتی ہے۔
4: موشی موشی تام سان ایما دوکو نی ایرو نو
2: توکی دائی نو ناکا نی ایماس
4: اے ناکا じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
2: わかりました。
5: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
1: アブハルさんキザンビルカーコーナー。アジカモーズウヘジャパンキコンビニエンスストアーズ。
0: इरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
1: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
0: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक یعنی روزمرہ استعمال کی وسیع اقسام کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ بعض میں تو شیمپو، صابن، کپڑے دھونے کا پاؤڈر، موبائل فون کی بیٹریاں اور زیر جامے اور موزے تک دستیاب ہوتے ہیں۔
1: یعنی ان میں روزمرہ زندگی کی تمام ہی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں؟
0: جی ہاں، تقریباً تمام ہی چیزیں۔ ان میں نہ صرف اے ٹی ایم سے رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہے اور یہاں سے انٹرنیٹ کے ذریعے خریدے گئے ٹکٹ وغیرہ بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعی کنوینئنس یعنی سہولت کے حامل اسٹورز ہیں۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 24 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान सरकार ने शुक्रवार को विदेशी नागरिक स्वीकारने से जुड़ी भावी नीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की एक नई समिति गठित करने का निर्णय लिया। सरकार ने जनवरी में विदेशी नागरिकों से संबंधित भावी नीतियों पर बुनियादी विचारों का संकलन किया था, जिनमें जापानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए सख्त शर्तें डाली गई हैं। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाते समय हुए समझौते में कहा था कि वे वित्त वर्ष 2026 के अंत तक जनसंख्या रणनीति तैयार करेंगी, जिसमें स्वीकार किए जाने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या तय की जाएगी। समिति के सदस्य देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सदस्य भावी जनसांख्यिकीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विदेशियों को स्वीकारने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। सरकार का कहना है कि वो समिति में हुई चर्चाओं के आधार पर

मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक बुनियादी नीतियां तैयार करेगी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों का कहना है कि वे दक्षिण चीन सागर में संघर्षों से बचने के लिए बनी आचार संहिता के संबंध में इस वर्ष के भीतर बातचीत पूरी करने के अपने प्रयास जारी रखना चाहते हैं। इस जल क्षेत्र में चीन, फिलीपींस और अन्य पक्ष अपने अपने क्षेत्रीय दावे कर रहे हैं। चीन और फिलीपींस इस क्षेत्र में हुई घटनाओं को लेकर अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते आए हैं। बृहस्पतिवार को आसियान ने अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के संबंध में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की। ये बैठक मंगलवार को मनीला में हुई, जिसकी चर्चा का मुख्य विषय दक्षिण चीन सागर की स्थिति रहा। विज्ञप्ति में विशेष रूप से चीन का नाम लिए बिना कहा गया कि कुछ मंत्रियों ने क्षेत्र में सभी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती कार्रवाइयों सहित समुद्र पाटने, गंभीर घटनाओं और अन्य गतिविधियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता की पुष्टि की है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले करने का दावा किया है, जिस पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर यह चेतावनी देते हुए कहा कि हूथी ईरान का परोक्ष सैन्य बल है और अगर दोबारा हमले हुए तो अमेरिकी सेना दोनों को निशाना बना सकती है। हूथी विद्रोहियों ने बृहस्पतिवार को बताया था कि उन्होंने दो टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। विद्रोहियों का कहना था कि सऊदी अरब ने उनकी समुद्री नाकाबंदी का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में ये हमले किए गए। उधर अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ईरान पर भीषण हमला करने पर विचार कर रहे हैं, जो उनके अनुसार पहले से कहीं बड़ा हमला हो सकता है। खबर के अनुसार ट्रंप का मानना है कि ऐसे किसी हमले के गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन उनका कहना है कि सेना तैयार है और वे निर्णय लेने ही वाले हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चरमपंथी गुट पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी पीएफएलपी का कहना है कि 50 साल से भी पहले एक इजरायली हवाई अड्डे पर गोलीबारी करने वालों में से एक ओकामोतो कोजो की मृत्यु हो गई है। उसकी उम्र 78 वर्ष थी। जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अनुसार दक्षिण पश्चिम जापान के खागोशिमा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ओकामोतो ने वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों सहित कई आंदोलनों में भाग लिया था। ओकामोतो शिगेनोबु फुसाको और अन्य लोगों द्वारा गठित जापानीज रेड आर्मी नामक उग्रवादी गुट का सदस्य था। ये गुट अब भंग हो चुका है। 30 मई 1972 को ओकामोतो और दो अन्य लोगों ने इसराइल के तेल अवीव के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर अंधाधुंध गोलीबारी कर ग्रेनेड फेंके थे। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे और 76 घायल हो गए थे। इजरायली अधिकारियों ने ओकामोतो को गिरफ्तार कर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1985 में फिलिस्तीनी उग्रवादियों और इजरायल सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कैदियों की अदला बदली में ओकामोतो को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 1997 में जापानीज रेड आर्मी के अन्य सदस्यों के साथ ओकामोतो को लेबनान में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उसे वहीं शरण दे दी गई। जापानीज रेड आर्मी के साथ मिलकर लड़ने वाले पीएफएलपी गुट ने बताया कि ओकामोतो की बृहस्पतिवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के एक उपनगर में मौत हो गई। जापानी दूरसंचार कंपनी सॉफ्टबैंक का कहना है कि वो अगस्त मध्य या उसके बाद अपनी फ्लाइंग बेस स्टेशन संचार सेवा का घरेलू परीक्षण शुरू करेगी। सॉफ्टबैंक ने बृहस्पतिवार को हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन यानी हैप्स नामक योजना का खुलासा किया। हैप्स का तात्पर्य संचार उपकरणों से युक्त मानव रहित विमान से है। ये विमान समताप मंडल में लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। फ्लाइंग बेस स्टेशन जमीन पर बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध न होने की स्थिति में भी 100 किलोमीटर के दायरे में संचार नेटवर्क प्रदान कर सकते हैं। सॉफ्टबैंक को आपदाओं के दौरान या दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में हैप्स का उपयोग किए जाने की उम्मीद है। कंपनी जल्द से जल्द अगले साल इसकी व्यावसायिक सेवा आरंभ करना चाहती है। जापान के पश्चिमी प्रीफेक्चर नागासाकी में बच्चे सूरजमुखी के लगभग 1.5 लाख फूलों से बनी एक विशाल भूल भुलैया का आनंद ले रहे हैं। उन्जेन शहर में प्राथमिक विद्यालय के छात्र 2023 से स्थानीय निवासियों की मदद से हर साल ये भूल भुलैया बनाते आ रहे हैं। प्रवेश से निकास द्वार तक का मार्ग बच्चों ने खुद तैयार किया है। उन्हें उम्मीद है कि ये भूल भुलैया पर्यटन का एक नया केंद्र बनेगी। बृहस्पतिवार को तीसरी कक्षा के छात्रों ने पीले कागज की पट्टियों से प्रवेश द्वार को सजाकर इस वर्ष की भूल भुलैया को अंतिम रूप दिया। इनमें से एक पट्टी पर आगंतुकों से सूरजमुखी की तरह सकारात्मक रहने का आग्रह किया गया है। इसके बाद छात्रों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए भूल भुलैया से निकलने की कोशिश की। बच्चों के कद के बराबर के ये पौधे 3,300 वर्ग मीटर के खेत में फैले हैं। कुछ बच्चों ने इस अनुभव को चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार बताया। ये भूल भुलैया इस महीने के अंत तक आम लोगों के लिए खुली है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।